0: सुबह के समय 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये अनमोल विचार।
1: ज्ञान वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। ये ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना समय कम कर सकता है। जितना अधिक सीखते हैं उतना ही सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखना ही जीवन को सफल और सार्थक बनाता है।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।

0: श्रोताओं, अनूप जलोटा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें भूमि की उर्वरा शक्ति को कैसे कायम रखा जाए इस संदर्भ में।

0: निचीवा ढालू भूमि को सीढ़ीदार खेत के रूप में बनाकर सफलतापूर्वक उसमें खेती कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाते समय भूमि की ढाल, मिट्टी की किस्म, वार्षिक वर्षा आदि पर ध्यान देना जरूरी है। सीढ़ीदार खेत बनाने से हम भूमि का सही उपयोग कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेत कम वर्षा एवं अधिक वर्षा के क्षेत्रों में अलग अलग विधि से बनाए जाते हैं। सीढ़ीनुमा खेत 8% से अधिक के ढाल पर बनाए जाते हैं। अधिक वर्षा के क्षेत्रों में खेतों का ढाल अंदर की ओर किया जाता है, जिससे कि बारिश का अधिक पानी सफलतापूर्वक खेतों से बाहर जा सके और मिट्टी का कटाव कम से कम हो। खेत में अंदर की ओर एक नाली बना दी जाती है, जिससे कि बहता पानी सफलतापूर्वक बाहर निकल सके। कंटूर का तात्पर्य है समान ऊंचाई पर, अर्थात किसी पहाड़ या फिर किसी भूमि पर एक ऊंचाई के स्थानों को एक पंक्ति में मिला देना। ट्रेंचिंग का अर्थ है नाली बनाना। अतः एक ही ऊंचाई पर नाली बनाने को कंटूर ट्रेंचिंग कहते हैं। पहाड़ी जमीन पर जहां ना तो खेत बनाना संभव है और ना कोई फसल लेना, वहां पर हम कंटूर ट्रेंचिंग पद्धति से बागानी फसलें व घास आदि सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। जंगल साफ करने के बाद 8 से 10 मीटर की दूरी पर कंटूर पर खूंटी लगा दें। ये दूरी लगाए जाने वाले पौधे के अनुसार तय की जाती है। पंक्ति के नीचे एक जैसी पंक्ति मिल जाए और नाली पौधे से 2 से 15 मीटर ऊपर रहे। नाली बनाने से निकाली गई मिट्टी को नाली के नीचे की ओर एक मेड़ के रूप में रख देते हैं। पहाड़ी जमीन पर पानी को भूमि के अंदर जाने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि पहाड़ों में पानी ठहर नहीं पाता है। अतः नाली बनाने से पानी को भूमि में ले जाने में सहायता मिलती है। पेड़ पौधे लगाते समय भूमि की ऊपरी परत खुल जाती है। नाली बनाने से ऊपर की अच्छी उपजाऊ मिट्टी नाली में आ जाती है। बेकार भूमि में कंटूर ट्रेंचिंग विधि द्वारा पानी रोककर भूमि का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कंटूर बंडिंग का अर्थ है समान ऊंचाई के स्थानों पर मेड़ बनाना। ये एक ऐसा उपाय है जिससे ढालू भूमि पर मिट्टी का कटाव कम करके खेती किया जा सकता है। कंटूर बंडिंग 6% ढाल तक की भूमि पर की जाती है। ये प्रायः शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ इसे अधिक बारिश के क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है, जिसे हम ग्रेडेड बंड कहते हैं। दो मेड़ों के बीच की दूरी 40 से 50 मीटर, मेड़ की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तथा मेड़ के नीचे की चौड़ाई 3 से 4.5 मीटर एवं ऊपर की चौड़ाई 1 मीटर तक रखना चाहिए। कंटूर बंडिंग से भूमि का संरक्षण होता है और साथ ही साथ ढालू भूमि में जल प्रबंध भी आसानी से किया जा सकता है। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी में दलहनी फसलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन फसलों का प्रयोग खाद, भोजन तथा चारे के रूप में होता है। दाल की खेती सिंचाई की असुविधा वाले स्थानों में भी आसानी से की जा सकती है। दलहनी फसलों की जड़ों में एक प्रकार की गांठें होती है, जो कि वायुमंडल से 40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर खींच लेती है। इस फसल के बाद नाइट्रोजन वाली खाद का अधिक प्रयोग न करने पर भी खेत से अच्छी फसल मिलती है। हमारे इन द्वीपों में बारिश अधिक होने के कारण मिट्टी कटाव की समस्या भी ज्यादा है। दलहनी फसल मिट्टी कटाव को रोकती है या कम करती है। इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जा सकता है, जो कि खेत की मिट्टी की भौतिक व रासायनिक गुणों में सुधार लाती है। किसान भाइयों, इस प्रकार भूमि का सही प्रयोग और सही फसल के चुनाव से हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स, विषय था भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे कायम रखे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों के बाद यानी सुबह 6 बजे हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक

0: Pool A. The top two teams for each pool will advance to the semi-finals. India will take on Chinese Taipei in their final pool match tomorrow. In Uttarakhand, UNESCO World Heritage Site Valley of Flowers, located in Chamoli district, has been open to tourists. Forest Department has appealed to visitors to cooperate in the conservation of the valley's rich biodiversity and rare plant species. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतरद्वीपीय जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटान आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान कल यानी बुधवार सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी बाराटान कल बुधवार 3 जून को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छोड़कर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सुबह 6:15 पर शहीद द्वीप जाएगा तथा ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप जाने के लिए एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी हडबे कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा तथा ये जलयान अगले दिन बृहस्पतिवार 4 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा कल सुबह 7 बजे शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। एमवी जॉली बॉय कल सुबह 7 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान अगले दिन यानी बृहस्पतिवार 4 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर शहीद इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी भारत सीमा बृहस्पतिवार 4 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा तथा ये जलयान उसी रोज रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कालीघाट बृहस्पतिवार 4 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार जाएगा तथा ये जलयान शुक्रवार 5 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:15 हुए हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
2: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जन्मदिन जीवन का एक बहुत ही खास और यादगार दिन होता है। हर साल ये दिन हमें एक नई खुशी, उत्साह और उमंग से भर देता है। आज के इस समय में जन्मदिन मनाने का चलन बहुत बढ़ गया है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पार्टियां करते हैं, केक काटा करते हैं, गाने गाते हैं और शुभकामनाएं एक दूसरे को मिलकर देते हैं। दोस्तों, जन्मदिन के अवसर पर अक्सर हमारे संबंधी हमें इस गीत से बधाई देते हैं।

जन्मदिन हमें ये सिखाता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे हमें खुशी और अच्छे कार्यों के साथ जीना चाहिए। ये दिन हमें अपने माता पिता और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर देता है क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा जीवन संभव हुआ है। दोस्तों, जन्मदिन में मिली दुआएं हमारे दिल को खुशियों से भर देती है।

जन्मदिन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें। ये दिन हमें नए संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है। वैसे दोस्तों, किसी अपने को जन्मदिन की देनी हो बधाई तो कैसे दोगे आप? कहीं ऐसे तो नहीं?

0: जन्मदिन केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और बेहतर बनाने का सुनहरा अवसर है। इसे हमें प्रेम और खुशी के साथ मनाना चाहिए। दोस्तों, जन्मदिन की खुशियां मनाते रहे, प्रेम बांटते रहे, और इसी दुआ के साथ अपनी दोस्त गीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम इंद्रधनुष। विषय था जन्मदिन और प्रस्तुत कर रही थी गीता। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान के 257वीं कड़ी। गायक कलाकार श्रीकांत पारगांवकर तथा संगीत संयोजक सतीश भाटिया।

विलाप करती सीता को रावण अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चला। मार्ग में एक स्थान पर गिरिशृंग पर बैठे वानर समूह को देख सीता ने अपना एक वस्त्र खंड गिरा दिया। उधर मारीच वध के स्थान पर अनुज लक्ष्मण को आया देख श्री राम ने चिंता प्रकट की। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लक्ष्मण वहां क्यों चले आए? गोदावरी तट पर आश्रम सूना पाकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विलाप करते वन में भटकते दोनों भाइयों की तब जटायु से भेंट होती है, जो रावण से युद्ध में परास्त होकर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। श्री राम के दर्शनों के लिए अब तक उनके प्राण टिके हुए हैं।

257वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए वतन के गीत।

श्रोताओं, अभी आप संवेद स्वर में वतन के गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:50 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों में हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं और मछुआरों को मौसम संबंधी पे चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार सागर में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से होने की संभावना है, जिसके चलते समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 4 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी। ठीक उसी समय FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रिले करेंगे

आयोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम 7:30 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 63वीं वर्षगांठ पर भेंट वार्ताओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम 63 वर्षों की सुरमई यात्रा। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सलमा आगा को सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय होगा सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप प्रिया क्रिस्टरस का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का आनंद लीजिएगा सुबह 10:00। दिन में 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत आप सुन पाएंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु में सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 12:30 पर मलयालम में विषय आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। साथ ही के सदाशिवन से ली गई भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप पंकज उदास को सुन पाएंगे 1:10 पर। 1:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर स्थानीय सभा जारी रहेगा, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक। और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा सवाई गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत आपको सुनवाएंगे। साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्षों की वर्षगांठ पर वार्ता भी आप सुन पाएंगे। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप अशोक खोसला को सुनिएगा। कार्यक्रमों का विवरण आपको दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। शाम 5:00 तमिल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वेलन उलगम। 5:30 पर बांग्ला में विशेष आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। किसानवाणी कार्यक्रम शाम 6:00, जिसमें आप आकाशवाणी के 90 वर्षों की वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 6:30 पर शाम बहार कार्यक्रम का लुत्फ उठाइएगा। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं 7:15 पर दी जाएगी। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युववाणी के तहत आकाशवाणी श्री विजयपुरम के स्थापना दिवस के उपलक्ष पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत की जाएगी। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार, उसके बाद गौरव गान प्रसारित की जाएगी। और रात्रि 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे संदेशे आते हैं। तथा इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन कार्यक्रम हम अपने ही दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग ह्लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग ह्लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः, प्रवक्ता च डॉ संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
5: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:01 और 20 सेकंड हुए हैं।

শ্রোতা ব্লিজেসো নিয়ে জন সুষ্ণায়। पहले सुनिए मौसम का हाल। आज सुबह 5:30 बजे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 36.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। सापेक्ष आर्द्रता 90% और अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कल श्री विजयपुरम का न्यूनतम तापमान रहा 24.9 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:54 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:40। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए आज के विमान उड़ान संबंधी जानकारी। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 आज ही दिन में 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए सीधे वापसी उड़ान भरेगा। ये थी विमान उड़ान संबंधी जानकारी। एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम 7:30 पर, जिसके तहत आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 63वें वर्षगांठ पर भेंट वार्ताओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम 63 वर्षों की सुरमई यात्रा। समय याद रखिए, सुबह 7:30 पर। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:05 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। शिक्षा मंत्रालय की स्कूल चैलेंज तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान 2025 तंबाकू मुक्त पीढ़ी की ओर के तहत प्राथमिक विद्यालय कलादी को फाउंडेशनल श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से कल दक्षिण अंडमान में टीकाकरण अभियान के 33वें दौर का शुभारंभ किया गया और मॉनसून के दौरान संचालित होने वाले सामान्य मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षित यात्रा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

0: स्कूल चैलेंज तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान 2025 तंबाकू मुक्त पीढ़ी की ओर के तहत मध्योत्तर अंडमान के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलादी ने फाउंडेशनल श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद इस स्कूल को राष्ट्रीय स्तर के विजेता के रूप में चुना गया और नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह और नशा मुक्त विद्यालय कार्य योजना के शुभारंभ के दौरान स्कूल को सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षा उपनिदेशक विज्ञान राम प्रवेश की उपस्थिति में विद्यालय के शिक्षक तपन सरकार को प्रदान किया गया। आकाशवाणी श्री विजयपुरम आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। 2 जून 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक आकाशवाणी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इन द्वीपों में अपनी सेवाएं दे रहा है। इस अवसर पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी सी सुब्बा राम ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और संस्कृति का विश्वसनीय माध्यम बनी हुई है।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम के 63वें स्थापना दिवस पर सभी श्रोताओं, कलाकारों एवं कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 63 वर्षों से आकाशवाणी सूचना, शिक्षा, संस्कृति और जनसेवा का विश्वसनीय माध्यम बनी हुई है। हम अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप जनहित और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। आइए इस अवसर पर हम सभी जनसेवा और उत्कृष्ट प्रसारण के अपने संकल्प को और मजबूत करें। जय हिंद।
0: स्थापना दिवस के अवसर पर आकाशवाणी परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाएंगे। तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल ने इन द्वीपों में रहने वाले तेलंगाना वासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन राज्य के लोगों की आकांक्षाओं, उनके लचीलेपन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करता है। इन वर्षों में तेलंगाना नवाचार, प्रौद्योगिकी, कृषि, बुनियादी ढांचे और समावेशी शासन के क्षेत्रों में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य ने अपनी गौरवशाली परंपराओं, जीवंत कला रूपों और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के साथ साथ तीव्र आधुनिक विकास को सफलतापूर्वक संतुलित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह अवसर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी ने अंडमान निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद कल लोक निवास में द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी से शिष्टाचार भेंट की। इस बीच श्रीविजयपुरम नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष एम वसंता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वी वेट्रिवेलु और कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश पाल गोविंद ने भी कल लोक निवास में उपराज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। प्रशासनिक कारणों से जहाज एमवी सेंटिनल की पूर्व घोषित समय सारणी में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाने वाले जहाज की वापसी अब आज रात 8 बजे के बजाय कल सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। जिन यात्रियों के पास एमवी सेंटिनल की टिकटें हैं वे उसी टिकट पर इस संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यात्रा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है टीकाकरण अभियान और दिशा निर्देश। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से कल पूरे दक्षिण अंडमान में खुरपका मुंहपका रोग सामूहिक टीकाकरण अभियान के 33वें दौर का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग ने वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में टीका कार्यकर्ताओं, पशु संचालकों और पशु चिकित्सा कर्मियों की 11 विशेष टीकाकरण टीमों का गठन किया है। टीकाकरण अभियान के साथ बड़े पैमाने पर पशुओं के कानों में टैग लगाने का काम भी किया जा रहा है। इससे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं की उचित पहचान करने, सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने और उनकी प्रभावी निगरानी करने में मदद मिलेगी। विभाग ने सभी पशुपालकों से निर्धारित

तिथियों पर टीकाकरण के लिए उपस्थित रहने की अपील की है। अंडमान निकोबार क्षेत्र में मॉनसून और ख़राब मौसम के दौरान मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच संचालित होने वाले सामान्य मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षित यात्रा के संबंध में नौवहन महानिदेशक मुंबई ने दिशा निर्देश और परामर्श जारी किए हैं। नौवहन महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में संचालित जहाज़ों के लिए मॉनसून फिटनेस सर्वेक्षण, आयु आधारित प्रतिबंध, कुछ कार्गो और कंटेनर जहाज़ों को दी गई छूट, मौसम आधारित नौवहन अनुमति तथा निरीक्षण संबंधी आवश्यकताएं लागू रहेंगी। परिपत्र के अनुसार जनवरी से अप्रैल के बीच होने वाले वार्षिक अथवा नवीनीकरण सर्वेक्षण के दौरान मॉनसून संबंधी जांच एक साथ की जा सकती है। अन्य मामलों में मॉनसून शुरू होने से पहले अलग से निरीक्षण कराया जा सकेगा। ये प्रावधान सामान्य मालवाहक जहाज़ों के लिए निर्धारित है। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रंगलाल हल्दर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में शहीद द्वीप का एक दिवसीय आधिकारिक दौरा किया। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने रामनगर और लक्ष्मणपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। इन बैठकों में पार्टी संगठन को मजबूत करने और द्वीपों के स्थानीय मुद्दों के समाधान पर चर्चा की गई। इसके अलावा नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया, जहां परिवहन, पर्यटन, रोजगार, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जन समस्याओं पर चर्चा हुई। इस प्रतिनिधिमंडल में महिला कांग्रेस की राज्य अध्यक्ष जुबैदा बेगम, ओबीसी के अध्यक्ष आर के राज और असंगठित श्रमिक एवं कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष एस तेजेश्वर राव भी शामिल थे। डिगलीपुर पुलिस थाना में हाल ही में पंचायती राज संस्थान के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। एसडीपीओ राहुल विक्रम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायती राज संस्थान के सदस्यों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और क्षेत्र के अन्य हितधारकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने, पुलिस और लोगों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने और कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को हल करने पर चर्चा की गई। क्षेत्र में सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभागियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए। इसके अलावा पुलिस थाना द्वारा आयोजित किए जा रहे ग्रीष्मकालीन शिविर के हिस्से के रूप में बच्चों को क्षेत्र के पुलिस स्टेशन, पुलिस रेडियो स्टेशन और फायर स्टेशन का दौरा कराया गया। इस दौरे का उद्देश्य बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों और शांति व सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका के बारे में जानकारी देना था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्रालय की स्कूल चैलेंज तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान 2025 तंबाकू मुक्त पीढ़ी की ओर के तहत प्राथमिक विद्यालय कलादी को फाउंडेशनल श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से कल दक्षिण अंडमान में टीकाकरण अभियान के 33वें दौर का शुभारंभ किया गया और मॉनसून के दौरान संचालित होने वाले सामान्य मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षित यात्रा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

देश रागनी कार्यक्रम में आप श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब बात अपने देश की आती है तो भारत का नाम हमें गर्व से भर देता है। सदियों से भारत दुनिया की शान रही है। हमें अपना देश जान से प्यारा है। विभिन्नताओं के बीच एकता के माला में पिरोया गया हमारा देश भारत है। भारत हमारी

जन्मभूमि है, बड़ी शान से हम इस बात को कहते हैं। इसकी एकता, अखंडता और देश में सौहार्द को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसकी विभिन्नता ही इसे दुनिया में अद्वितीय बनाती है।

अपने वतन की खास बात यह है कि इसे लोग अपने महबूब से भी अधिक प्रिय जाना है, तभी तो महबूब की अदाएं भी वतन की याद दिलाता है।

दोस्तों, हिंदुस्तान हमारी शान है, हमारा ईमान है। ये भारत भूमि हमारी कर्म भूमि है। अनेकता में एकता की बड़ी मिसाल है। भारत भाग्य विधाता, सत्य और अहिंसा इसका गहना है, और इस गहने को कोई बैरी चुरा ना ले, इसका ध्यान रखना है।

0: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
1: दोस्तों, देशरागनी कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही।

0: देश रागिनी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब आप सुनेंगे आकाशवाणी श्री विजयपुरम के 63वें वर्षगांठ पर भेंट वार्ताओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम 63 वर्षों की सुरमई यात्रा।

आए। ये केवल शब्द नहीं बल्कि वो भावना है जिसने दशकों से आकाशवाणी को जन जन की आवाज बनाया है। एक ऐसी आवाज जो कभी घरों के आंगन में गूंजी, कभी दूर बसे द्वीपों तक उम्मीद बनकर पहुंची, कभी संगीत बनकर दिलों को छुआ, तो कभी समाचार बनकर लोगों को देश दुनिया से जोड़ती रही। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम की 63वीं वर्षगांठ के इस विशेष अवसर पर हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का ये अवसर केवल एक स्थापना दिवस नहीं है, ये उन अनगिनत यादों का उत्सव है, उन स्वरों का सम्मान है और उस विश्वास का अभिनंदन है जिसने 63 वर्षों से आकाशवाणी को लोगों के दिलों में जीवित रखा है। 2 जून 1963, वो ऐतिहासिक दिन जब आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने अपने प्रसारण की शुरुआत की। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये केंद्र आने वाले वर्षों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक चेतना और जन भावनाओं का इतना महत्वपूर्ण माध्यम बन जाएगा। समय बदलता गया, तकनीक बदलती गई, रेडियो के स्वर ट्रांजिस्टर से मोबाइल तक पहुंच गए, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है आकाशवाणी का अपनापन। प्रिय श्रोताओं, आकाशवाणी केवल समाचारों और गीतों का माध्यम नहीं है, ये भावनाओं का वो पुल है जिसने लोगों को लोगों से जोड़ा है। ये वो मंच है जहां स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान मिली, जहां लोक संस्कृति को सम्मान मिला, जहां हर भाषा, हर बोली और हर भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली। इन 63 वर्षों में आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने अनगिनत ऐतिहासिक क्षणों को अपनी आवाज दी है, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, सामाजिक जागरूकता अभियान हो, आपदा के समय लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचानी हो, या फिर संगीत, साहित्य और संस्कृति को नई पहचान देनी हो। श्रोताओं, बातों और यादों के इस कारवां को थोड़ी देर के लिए संगीत के रंगों से सजाते हैं।

0: आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक समाचार श्री दुर्गविजय सिंह दीप ने आकाशवाणी श्री विजयपुरम में बिताए अपने अनुभवों को जिस आत्मीयता से साझा किया, उससे ये साफ झलकता है कि यहाँ बिताया गया समय आज भी उनके दिल के बहुत करीब है।
1: आज का आकाशवाणी श्री विजयपुरम सितंबर 2024 से पहले आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के नाम से चर्चित था, जिसकी स्थापना 1963 में आज ही के दिन हुई थी। इस केंद्र के स्थापना दिवस पर आज वैचारिक रूप से जुड़ते हुए मुझे हार्दिक आनंद की अनुभूति हो रही है। अपनी सेवा काल के दौरान यहाँ व्यतीत समय के हर एक पल मेरे स्मृति पटल पर चित्रित है। अपने पहले कार्यकाल में 10 वर्षों तक संवाददाता के रूप में कार्य करने के बाद मैं दिल्ली स्थानांतरित हो गया। वर्ष 2011 में उपनिदेशक के पद पर दोबारा मुझे यहाँ भेजा गया। वर्ष 2016 में आकाशवाणी के संयुक्त निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने से पूर्व अपने दोनों कार्यकाल के दौरान इस केंद्र और द्वीप समूह के सामाजिक परिवेश से जो भी अनुभव प्राप्त हुए वे अब तक जीवंत बने हुए हैं। मुख्य भूमि वापस लौटने के बाद भी आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर शब्द मेरी पहचान के साथ जुड़ सा गया है। आगरा में साहित्यिक मंचों पर मेरे परिचय के साथ आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर का नाम हमेशा लिया जाता है। उस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्मृतियां ताजा हो उठती हैं। श्री विजयपुरम में अपने सेवा काल के दौरान द्वीप समूह की आबोहवा, नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और समाज की अनूठी जीवन शैली से जो कुछ सीखने को मिला वह मेरे लिए अमूल्य धरोहर है। यह मेरा सौभाग्य ही कहा जाना चाहिए कि आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से मुझे द्वीपवासियों के सुख दुख में सहभागिता का अवसर मिला। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर केंद्र की स्थापना 1963 में हुई थी, जो अब आकाशवाणी श्री विजयपुरम के नाम से अलंकृत है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक यह केंद्र अनवरत रूप से अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहा है। पिछले 6 दशकों की अपनी यात्रा में इसने एक

0: नहीं अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। द्वीप समूह में आकाशवाणी को लोगों की जीवन रेखा कहा जाता है। इस केंद्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण की भावना से ही यह कथन चरितार्थ हो सका है। अतीत की अपनी गौरवशाली उपलब्धियों की सुगंध से अनुप्रेरित यह केंद्र आज भी समर्पित सेवा में जुटा हुआ है। द्वीप समूह में टीवी चैनलों के पहुंचने के बाद भी आकाशवाणी की प्रासंगिकता कायम है। इस केंद्र के समाचार कार्यक्रम और इंजीनियरिंग अनुभागों ने समन्वित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये सभी बधाई के पात्र हैं। इस केंद्र से सेवानिवृत्त जो हस्तियां दिवंगत हो चुकी हैं उन्हें शश्वत नमन है, और जो लोग वर्तमान में यहाँ सेवारत हैं उनके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी मंगल कामना है कि आकाशवाणी का यह केंद्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे और अपनी सेवा से उपलब्धियों के नए आयाम स्थापित करता रहे। अंत में इस केंद्र की सार्थकता को मैंने एक रचना के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। अंडमान में हमने जिसे सतत देखा है, अंडमान में हमने जिसे सतत देखा है, हरे भरे द्वीपों की जीवन रेखा है। सुरभित शब्द सुमन की प्यारी मूरत है, सुरभित शब्द सुमन की प्यारी मूरत है, दिल की धड़कन से वह जुड़ी जरूरत है। समय आपदा का जब भी द्वीपों में आया, समय आपदा का जब भी द्वीपों में आया, आगे बढ़कर बनी सहायक साथ निभाया। पामन मन भावन वो जन कल्याणी है, कोई और नहीं वो अपनी आकाशवाणी है, कोई और नहीं वो अपनी आकाशवाणी है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम के स्थापना दिवस पर इस केंद्र से जुड़े सभी को हार्दिक बधाई, धन्यवाद।
1: श्रोताओं, वास्तव में आकाशवाणी केवल एक संस्था नहीं बल्कि भावनाओं और अपनत्व का वो संसार है जिसकी यादें जीवन भर साथ रहती हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम के पूर्व निदेशक श्री रमेश एस अग्रवाल के कुशल निर्देशन में आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने कई सुंदर, सार्थक और यादगार कार्यक्रम श्रोताओं तक पहुंचाए। आज जब वे उन स्वर्णिम दिनों को याद करते हैं तो उनकी भावनाएं शब्दों में समा नहीं पाती। उनकी आवाज में आज भी वही अपनापन और वही जुड़ाव महसूस होता है जो वर्षों पहले इस केंद्र के प्रति था।
2: आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की 63वीं वर्षगांठ के इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर आपको और आकाशवाणी के सभी सम्मानित श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। वह सुनहरा दौर 24-25 वर्ष पहले की यादें वाकई बेहद खूबसूरत और भावुक करने वाली हैं, जब मनोरंजन के लिए दिलचस्प कार्यक्रम, निकोबार के लोकगीत, ठंडा ठंडा पानी, सितारों के संग जैसे कार्यक्रमों में फिल्मी कलाकारों के साथ फोन पर बातचीत, उनकी पसंद के गाने सुनना जिसमें लता जी, अमिताभ जी, ऋतिक रोशन जी जैसे दिग्गज कलाकारों के इंटरव्यू उस जमाने में किसी उत्सव से कम नहीं थे। एक सच्चे रेडियो प्रेमी और आकाशवाणी के उस दौर के गवाह के रूप में यह संदेश दिल को छूता है। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के इतिहास के 40 वर्षों का लेखा जोखा और स्मारिका का प्रकाशन भी इसी लगन का नतीजा था। तेज बारिश, आंधी तूफान और सुनामी जैसी भयानक आपदा के समय आकाशवाणी का वह सेवा भाव महत्वपूर्ण योगदान यह साबित करता है कि रेडियो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि संकट में भी जीवन रेखा एक लाइफ लाइन है। आज भले ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का जमाना आ गया है, लेकिन आकाशवाणी से जो दिल का रिश्ता एक बार जुड़ जाता है वह हमेशा कायम रहता है। माध्यम बदल सकते हैं, भावनाएं वही रहती है। दशकों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कोने कोने तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने के साथ साथ संस्कृति को सजोने में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की भूमिका अतुलनीय रही है। एक पुराना और समर्पित श्रोता ही इस तरह के गहरे अनुभव और यादें साझा कर सकता है। आकाशवाणी के इस गौरवशाली सफर में आप सभी श्रोताओं, तमाम प्रेमियों के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस वर्षगांठ के अवसर पर रेडियो के इस सफर से जुड़े सभी श्रोताओं और प्रसारकों को बहुत बहुत बधाई एवं सारी शुभकामनाएं।
1: श्रोताओं, आज का ये दिन सचमुच खास है, यादों से भरा, भावनाओं से सजा और अपनों के स्नेह से महका हुआ।

0: की और तत्काल जानकारी पहुंचाकर जनविश्वास को मजबूत किया है।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम आज अपनी स्थापना का 63वां वर्षगांठ मना रहा है। इस पावन अवसर पर इस परिवार से जुड़े सभी पूर्व और मौजूदा सदस्यगण, श्रोताओं और कलाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम जानते हैं कि आकाशवाणी सिर्फ एक संचार का माध्यम या फिर प्रसारण संस्था नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक चेतना की सशक्त आवाज रही है। जहां तक इन द्वीप समूह की बात है, इस मीडिया का कोई सानी नहीं है। यहां इसकी एक अलग और विशेष पहचान है। इस केंद्र की स्थापना से लेकर आज तक द्वीप समूह के कोने कोने तक सटीक और विश्वसनीय खबरें, सूचनाएं तथा विभिन्न मुद्दों पर त्वरित जानकारी पहुंचाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा ये द्वीप एक लघु भारत है, जहां विभिन्न भाषा भाषी, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। इन भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण के जरिए इस केंद्र ने पूरे द्वीप समूह को एकता के सूत्र में बांधे रखा है। इस केंद्र ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा दी है। आज आकाशवाणी श्री विजयपुरम की स्थापना दिवस पर आइए हम इसके गौरवशाली इतिहास को स्मरण करें, इसकी स्थापना से जुड़े महान हस्तियों को नमन करें, जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद इस केंद्र की स्थापना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। साथ ही नमन करें उन सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, जिनके अथक प्रयास से आज ये केंद्र श्रोताओं का मनपसंद केंद्र बन गया है।
0: रिटायर्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर श्री भानु प्रताप यादव ने अपने संदेश में कहा कि रेडियो द्वारा प्रसारित सूचनाएं समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। विशेषकर आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में आकाशवाणी लोगों तक तुरंत और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: पहले के आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर और आज के आकाशवाणी श्री विजयपुरम को इसके 63वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 2 जून 1963 को 1 किलोवाट की क्षमता से अपनी सेवाओं की शुरुआत करने वाले तब के आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर ने अपनी 6 दशकों की सराहनीय यात्रा में सफलता के नए आयाम स्थापित किए और आज यह लोकल से नेशनल और फिर नेशनल से ग्लोबल हो चुका है। जब पहली बार रेडियो पर सुना कि ये आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर है तो यह लगा कि कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, क्योंकि तब हम विविध भारतीय रेडियो सिलोन और बीबीसी लंदन तथा आकाशवाणी दिल्ली जैसे चैनलों से ही परिचित थे और हर बार ट्यूनिंग करते समय अगल बगल के स्टेशन हमें मुफ्त में सुनाई पड़ते रहते थे। अपनी शुरुआत से ही तब के आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर ने हर द्वीपवासी के घर में एक अदृश्य लेकिन अति उपयोगी सशक्त सदस्य के रूप में अपनी जगह बना ली। अपने कार्यक्रमों को बेहतर से बेहतर बनाते हुए आज आकाशवाणी श्री विजयपुरम के जो कार्यक्रम हैं, उनसे जीवन की कोई विधा, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। चाहे वह मनोरंजन हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो या फिर मौसम के विवरण या जलयानों के प्रस्थान और आवागमन की सूचना। सुनामी की दुर्घटना के दौरान आकाशवाणी ही एकमात्र संचार और संपर्क का साधन बना रहा था। हिंदी के प्रचार और प्रसार में अपनी द्वितीय भूमिका निभाते हुए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान और वर्चस्व को भी यथास्थिति के अनुसार बनाए रखा है। आवाज की दुनिया के जरिए श्रोताओं के दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़ने वाला यह एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसकी विश्वसनीयता अक्षुण बनी हुई है और इसे इस मकाम तक पहुँचाने के लिए आकाशवाणी के प्रशासनिक अधिकारियों, उद्घोषकों, कर्मचारियों, इंजीनियरों और अन्य लोगों का अथक परिश्रम शामिल है। मुझे याद आती है राज जी की, सायरा जी की, श्रीमती अनीस जी की, जो कि अपने समय में रेडियो के सितारे थे और हर द्वीपवासी इनसे परिचित था। फिर मदन मोहन सिन्हा मनोज, मुमताज जी का, मदन मोहन जी का दौर आया। श्री दुर्ग विजय सिंह द्वीप ने रेडियो समाचार और रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। राकेश चंद्रलाल की प्रभावशाली आवाज प्रादेशिक समाचार को और अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाती रही है। समय समय पर आमंत्रित विभिन्न विषयों के ताओं का योगदान भी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के कार्यक्रमों को सामयिक और सार्थक बनाता रहा है। एक बार पुनः मैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सभी समर्पित अधिकारियों, उद्घोषकों, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई के साथ अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
0: आकाशवाणी के कलाकार श्री राजेश कुमार निराश ने भावुक शब्दों में कहा कि आकाशवाणी ने लोगों को जो प्यार, जानकारी, संस्कृति और अपनापन दिया है, उसके लिए समाज हमें

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से जुड़ी श्रीमती रीता बैनर्जी ने अपने संदेश में कहा कि आकाशवाणी ने हमेशा लोगों तक सही

0: हमेशा इसका ऋणी रहेगा।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम आज अपनी स्थापना की 63वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आकाशवाणी पिछले 63 वर्षों से हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह हमारे साथ रहकर हमें ज्ञान, सूचना एवं मनोरंजन से अवगत कराता रहा है, इसके लिए हम आकाशवाणी के सदैव आभारी रहेंगे। आज इस अवसर पर मैं आकाशवाणी से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
0: श्रोताओं, रेडियो की यही खासियत है कि वो दूर रहकर भी दिलों को करीब ले आता है। सूचना, संवेदना और संस्कृति का ये रिश्ता वर्षों से यूं ही कायम है।

0: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम की 63वीं वर्षगांठ पर भेंट वार्ताओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम 63 वर्षों की सुरमई यात्रा सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी जयशिला।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान,
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी

0: गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
0: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि यह घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि

0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Myanmar President U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO

श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आज आप सलमा आगा के गाए चंद गजलों का लुत्फ उठा पा रहे हैं।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 9 बजे हैं और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ससुराल फिल्म का ये गाना जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और धुन तैयार की शंकर जयकिशन ने।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में तैयार हसरत जयपुरी का लिखा गाना आपको सुनवा रहे हैं, झुक गया आसमां फिल्म से, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार आपको सुनवाएंगे घराना फिल्म का गाना।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब लीजिए सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में तैयार शकील बदौनी का लिखा गाना घराना फिल्म से। आवाज है मोहम्मद रफी की।

श्रोताओं अब कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं चिराग फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह के बोल है व मदन मोहन का संगीत।

अभिलाषा। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह के बोल है व आर डी बर्मन का संगीत।

0: दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: श्रोताओं, इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको प्रिया बहनों का गायन सुनवा रहे हैं। इनके साथ वॉयलिन पर उषा राजगोपालन ने, मृदंगम पर केवी प्रसाद ने और घटम पर वीआर राजगोपाल कृष्णन ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए प्रिया बहनों का गाया राग ललित, जो रूपकम ताल में निबद्ध है, कृति मुथुस्वामी दीक्षितर की है।

0: श्रोताओं, ये था प्रिया बहनों का रूपकम ताल में निबद्ध गाया राग ललित। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रिया बहनों का गाया राग सरस्वती, जो कि रूपकम ताल में निबद्ध है, कृति त्यागराजा की है।

लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को। समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को।

अब तक आपने अपना नाम, पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं। इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब आरंभ होता है गीतों से सजा कार्यक्रम गीत का तचल। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बादल फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, बोल समीर के, धुन बनाई अनु मलिक ने।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था रेडी फिल्म से। आवाजें थी तुलसी कुमार, के और साथियों की। गीत रचना नीलेश मिश्रा की। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की। संगीत पद किया हिमेश रेशमिया ने।

जुनैद वासी का लिखा ये गीत था हॉन्टेड फिल्म से। आवाजें थी जोजो और निजुम शिराज की। संगीतबद्ध किया था चिरंतन भट्ट ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम पापा दी ग्रेट। गीतकार हैं अजय जीकरन तथा संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

विशाल ददलानी के स्वर में ये गीत था स्टैनली का डब्बा फिल्म से। बोल अनमोल गुप्ते के धुन बनाई थी हितेश सोनी ने। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म जोश से।

प्यार का पंचनामा, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत मीका सिंह और साथियों की आवाज़ों में। बोल लव रंजन के धुन बनाए सिंटन श्रियो ने।

मीका सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था प्यार का पंचनामा फिल्म से। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए गैंग फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और अनु मलिक की। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने।

सुनीति चौहान और अनूप आमोद की आवाज़ों में ये गीत था कुछ लव जैसा फिल्म से। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं करण शैम्भी को फिल्म लुका छुपी से। शब्द रचना निर्माण की, संगीत से सजाया गोल्ड बॉय ने।

करण शम्भी के गाए लुका छुपी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1297 कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।

0: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
1: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन तथ्य कुछ और है।
0: जी।
1: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
0: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
1: बताइए।
0: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
1: जी वो तो है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात यह है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है,
0: जी
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
0: जी
1: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे

0: में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
1: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
2: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
1: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है,

0: पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
1: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
0: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
1: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
0: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
0: चलो
3: अरे भेड़िया,
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
4: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
5: चलो चलो चलो
6: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
7: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
4: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
4: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
4: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
8: लुई पाश्चर
9: सर,
8: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
9: कहिए सर।
8: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
9: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
8: ठीक है।
4: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब

0: प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद यह प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए यह विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगे और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक

0: दिन उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
1: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
1: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
2: देखिए आप,
1: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
1: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पास्चर और अभी

0: इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार। उमंग उमंग
2: उमंग उमंग। श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1297वीं कड़ी का आनंद ले रहे थे।

0: दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अलका याग्निक और ईशान की आवाजों में कल होना हो फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए सपने साजन के फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक, शब्द रचना समीर की।

दिल परदेसी हो गया। अब सुनिए इस फिल्म का शीर्षक गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, संगीत से सजाया उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं समीर का लिखा एवं अमर मोहले का संगीतबद्ध किया हुआ गीत ओम फिल्म से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत था बागवान फिल्म से। बोल समीर के धुन बनाई थी आदेश श्रीवास्तव ने। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत है ऐतबार फिल्म से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और सुजाता भट्टाचार्य। इस गीत को लिखा है नासिर फराज ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

0: कुमार सानू और सुजाता भट्टाचार्य के गाए एतबार फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम। प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम्।

जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइना

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब पेश है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1000

0: 200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. She highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes to registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180 day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Suryakant, administered the oath of office to 5 new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nagu, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Valli and Senior Advocate V. Mohana took oath as judges of the Apex Court. The centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Deputy President of South Africa, Paul Mashatile, in New Delhi today. They discussed opportunities in trade, investments, MSMEs, digital and infrastructure domains. They also agreed on working closely in international forums. In a social media post, Dr. Jaishankar said he appreciates Paul Mashatile's strong commitment to deepening the long-standing partnership between the two countries. The anti-terrorism squad of Uttar Pradesh has arrested a young man named Muhammad Sheikh from Azamgarh, allegedly linked with Pakistani gangster Shehzad Bhatti. The ATS received information that Pakistan's ISI and terrorist organizations were collaborating with Bhatti with the aim of spreading terror and threatening India's sovereignty, unity and territorial integrity. Intelligence was collected about Muhammad Sheikh, who had connected with Shahzad Bhatti's terrorist gang via WhatsApp. The Central Board of Secondary Education CBSE portal for verification of issues in the supplied scanned copy of answer books and for re-evaluation of answers has been made live.

पंकज उधास की आवाज़ में ये थी ललित की रचना। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए नक्श लैलपुरी की लिखी ये गज़ल।

0: दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत भेजने के लिए आप अपना नाम व पता, फिल्म का नाम, गीत के बोल टाइप करके भेज दीजिए हमें इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार पुनः नोट करें 9474234000। करते हैं कार्यक्रम का आगाज़ और लेते हैं प्रोग्राम का पहला मैसेज, जिसे भेजा है अश्नाबाद से जगदीश ने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं मर्डर टू।

आवाजें हैं मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और साथियों की। इस गीत को लिखा सईद कादरी ने, धुन बनाई हर्षित सक्सेना ने।

0: सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था कुर्बान फिल्म से। आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की। इस गीत को लिखा था निरंजन अयंगर ने। इस गीत को सुनना चाहा था लिटिल अंडमान से अजीत ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अक्सर फिल्म से। आवाजें हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की। बोल समीर के धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता है डिगलीपुर से प्रीति और सुप्रिया।
1: लाओगे लाओगे लाओ

श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकित आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है। ये वीरता पुरस्कार समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं जन्नत फिल्म का ये गीत के की आवाज में। इस गीत के गीतकार हैं सईद कादरी तथा संगीतकार हैं प्रीतम। इस गीत को सुनना चाहा है छोलदारी से आकाश और दिव्यांशु ने।

एश किंग और शाह त्रिपाठी की आवाज़ों में ये गीत था हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था रंगत से सुमित्रा और अंकुर ने। इस गीत के साथ ही फिल्मी आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: simplifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West, Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार

0: निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशा टीले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी

0: आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
2: उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
4: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम।

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वीपों के कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। हडबे में 5 मिलीमीटर, श्रीविजयपुरम में 4 मिलीमीटर, कार निकोबार और नानकौरी में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक हो सकती है। अतः मछुआरों को 4 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय दोपहर के 2:31 होने को है। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिलनाम इनी रॉक रहमांग इंगरे तगा लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्गी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।

0: nga jin dai hangam mana din ke ke ti ke nye tenil sipu at kasim hoy nga til ngal ni sinta nga mu he ke ni re chang rong ita ka sa ta ita fan kan ro ta la harap nga yen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अशोक खोसला। तो पहले सुनते हैं जाफर गोरखपुरी की एक रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में अशोक खोसला की गाई चंद गजलें सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महलेर उल्लगम। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में आकाशवाणी की 90 वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा शाम में बहार संध्या 6:30 पर। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएँ। फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी के तहत आकाशवाणी श्री विजयपुरम के स्थापना दिवस के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम प्रसारित की जाएगी। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत रात 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार। रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए संदेश से आते हैं। रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम प्रातः 5:55 पर, जिसमें जानकारी का विषय रहेगा मिर्च की खेती। सवेरे 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा साइकिल शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। जन सूचनाएं सवेरे 7 बजे। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी। और 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप साहित्यिक दर्पण कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंदन दास को आप सुन सकेंगे। सुबह 9 बजे फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप उस्ताद अमजद अली खान का सरोदवादन सुन पाएंगे। सुबह 10 बजे फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT दिन के 11 बजे। 11:30 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी।

दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आकाशवाणी के 90 वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर महफिले कव्वाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे मोहम्मद अजीज़। 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय सभा जारी रहेगी। हमारे लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिए, यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए लम्हे। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल में बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा श्रीवर पुंगा। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम में आप आधुनिक गीतों का आनंद ले पाएंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म कसम तेरी कसम से। आवाज़ें थीं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, समीर के बोल थे, नरेश शर्मा का संगीत था। अब सुनते हैं विपिन सचदेव का गाया एक गीत, फिल्म का नाम है जानम और इस गीत को लिखा है फैज़ अनवर ने, धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों एवं बहनों को आंचल का
1: और शांता का नमस्कार।
0: किसान साथियों, हर बार की तरह आज के कार्यक्रम की भी हम शुरुआत करेंगे एक नेक विचार से।
1: आंचल, हमारा आज का जो विचार है वो है, कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए।
0: बड़ा ही प्यारा विचार है शांता, और इसका अर्थ है कि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आंचल तुमने।
0: और शांता, आज 2 जून है और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है।
1: बहुत खास है और हम सभी के लिए खास है आंचल। साथियों, 2 जून 1963 को 1 किलोवाट मध्यम तरंग मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ शुरू हुआ यह केंद्र आज द्वीप समूह के दूर दराज के क्षेत्रों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का मुख्य माध्यम है।
0: अंडमान के भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में जहां अन्य संचार साधन सीमित होते हैं, वहां यह रेडियो स्टेशन द्वीप वासियों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: आकाशवाणी के गौरवशाली सफर और इसके 90 वर्षों के जश्न पर हम उन सभी श्रोताओं को भी बधाई देते हैं। आप लोगों के प्यार और उत्साह के कारण ही हम आज इतने लंबे सफर को तय कर पाए हैं।

0: साथियों, कार्यक्रमों के तहत हम विशेष अवसरों पर वार्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं। स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जिससे हमारे तमाम भाई बहन खुशी जाहिर करते हुए आकाशवाणी से जुड़ते हैं।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम का प्राकृतिक आपदा के समय महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपदा के समय जब कोई भी यंत्र काम नहीं कर रहा था, तब आकाशवाणी ने 2400 घंटे लोगों को सूचनाएं दी। इस दौरान जो बिछुड़ गए थे, उन्हें मिलाने का भी कार्य कर रहा था। वाणी के माध्यम से आकाशवाणी ने लोगों को राहत पहुंचाई। उस पल को आज भी लोग बखूबी याद करते हैं।

0: साथियों, हमारा किसान वाणी कार्यक्रम का अपना रुतबा है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम किसान भाइयों के लिए जानकारी से भरपूर कार्यक्रम, वैज्ञानिकों के संदेश, कृषि से जुड़ी बातें, लाइव फोन इन कार्यक्रम तैयार कर उन गांव वासियों तक पहुंचाते हैं जिन्हें हमारे कार्यक्रम का हमेशा इंतजार रहता है।
1: आइए सुनते हैं कुछ किसान बहनों की जुबानी।
0: सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं बहन मीनाक्षी से।
2: सबको नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं इंद्रानगर विलेज में रहती हूँ। मैं पोल्ट्री फार्म कर रही हूँ और हमको 2020 से जुड़ी हूँ। ऑल इंडिया रेडियो में हम लोग आना जाना हमेशा होता है, हर एक प्रोग्राम में हम विजिट में हमेशा जाती हूँ। और हम लोग, मेरे को जो भी मुश्किल है, जो भी पोल्ट्री का रिलेटेड कुछ भी समस्या है, तो हम वहाँ से कलेक्ट भी कर लेते हैं। और रोज़ 6 बजे के किसान का बहुत सारे प्रोग्राम होता है ऑल इंडिया रेडियो में, वो सब सारा कुछ सुनती हूँ भी। और हम लोग को, मेरे को तो बहुत सारा पहले बिजनेस में बुरा लॉस भी था, ताकि हम जो पोल्ट्री फार्म कर रही है किसी को जानकारी भी नहीं था। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं हमेशा ऑल इंडिया रेडियो में सबसे जुड़ी हूँ। मेरा सेल भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम जाके वहाँ में सारा कुछ पोल्ट्री फार्म के बारे में और मैं बिजनेस के बारे में सारा कुछ बोलती हूँ, मेरा घर का आटा सारा बताती हूँ। वहाँ से अच्छा जानकारी मिलता है और बहुत सारा लोग भी सुन के भोजन आके यहाँ अच्छा सेल भी हो रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद करूँगी कि ऑल इंडिया रेडियो में हर एक समस्या को हम लोग पूरा करके देता है, और हम लोग को जो भी डाउट है तब भी वो भी पूरा करके दे रहा है, इसलिए उसको धन्यवाद। इसी तरह आने वाला समय में भी और पूरा सारा प्रोग्राम होने के लिए ऑल इंडिया की तरफ से होना चाहिए, और हम लोग हमेशा कुछ कुछ कार्यक्रम में इन्वाइट करने से और भी अच्छा रहेगा। यह ऑल इंडिया रेडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार।
1: अब आइए मिलिए भानुमति से।
0: भानुमति जी, बताइए रेडियो से आप कैसे जुड़ी, रेडियो सुनना आपको कैसे लगता है?
3: हम लोग बचपन में, तो मेरा भी अभी 50-54 एज हो गया है, इसका मतलब वो टाइम में तो रेडियो ही ऑप्शन था
0: जी।
3: तब हम लोग जैसा, हम लोग घर में तो रेडियो था, बचपन से जैसा पैदा हुआ वही टाइम से हम लोग घर में तो रेडियो था। और वो टाइम करंट नहीं था, लेकिन मेरे को याद है मेरे घर में, हम थोड़ा 5th क्लास पढ़ने के बाद ही, मेरे को लगता हम लोग गाँव में थे ना, इसलिए करंट उसको बाद ही मिला।
0: अच्छा।
3: तब बैटरी में डाल के रेडियो का ही एक ऑप्शन है, कुछ भी सुनना टाइम पास बोलने से। शाम को टाइम है तो हम लोग स्कूल से आएंगे तो रेडियो खोल देंगे, हर चीज़ तो रेडियो में ही सुनना है। और इसके बाद में थोड़ा दिन हम लोग डेवलप होने के बाद तो सारा टीवी ये आया था, लेकिन डिसास्टर का टाइम में रेडियो को थ्रू से ही हम लोग को काम चला है। और जब इंटर आइलैंड पोस्टिंग मेरा हुआ था वो टाइम में तो मेरे पास टीवी भी हम नहीं लेके गया
0: जी,
3: तब मेरा ऑप्शन सारा रेडियो ही था। तो रेडियो को मैं तो अभी भी मैं इम्पोर्टेंस है रेडियो को।
0: अच्छा।
3: हम लोग आज भी सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं रेडियो को, शाम को टाइम में प्रोग्राम सुनते हैं। और बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक चैनल है रेडियो, क्यों बोल से गाँव में हर जगह में जैसा डिगलीपुर है और भी अंदर अंदर जगह में अभी तक उनको ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं मिला है, रेडियो एक ऑप्शन है बच्चों को। एजुकेशन उसको थ्रू से भी कराते हैं
0: जी, जी।
3: आपको चैनल से रेडियो को चैनल थ्रू से एजुकेशन,
0: हाँ बच्चों के लिए भी प्रोग्राम किया जाता है जी।
3: रेडियो को से बच्चों लोग सुनते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी कुछ खुशा रहता है रेडियो के थ्रू।

0: और ऊपर से जनरल नॉलेज भी कुछ कराते तो रेडियो को दूर से
1: जी
0: पढ़ाई भी होता है, ये तो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रेडियो नहीं होने से ये तो गांव गांव नहीं पहुँचेगा
1: नहीं,
0: ये
1: अब ये
0: चीज़,
1: बिल्कुल
0: तो
1: जानकारी उन तक नहीं
0: जुड़ेंगे
1: पहुंच
0: नहीं।
1: पाएगी।
0: जो सबको साथ में, जो हम लोगों वर्ल्ड का साथ में जुड़ने का एक साधन बोलने से ये रेडियो भी
1: रेडियो
0: है,
1: है।
0: गांव को जोड़ता है जैसा कि सिटी का
1: जी
0: साथ
1: जी
0: में।
1: जी
0: हर चीज़ तो गांव में नहीं जा रहा
1: नहीं
0: है,
1: जी
0: बहुत अच्छा लगता है रेडियो। और भी आगे जाना चाहिए,
1: जी
0: क्यों हर जगह में तो नेटवर्क नहीं रहता। अंडमान निकोबार तो आइलैंड से बना
1: जी
0: हुआ है
1: जी
0: और बहुत सारे आइलैंड्स में अभी तक तो नेटवर्क नहीं है, तो रेडियो में और भी बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं। और एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है बच्चों को, वहाँ में बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन का थ्रू और बहुत कुछ और कराना है, एग्रीकल्चर कराना है।
1: हाँ, किसानों के
0: हाँ
1: लिए और आप क्या चाहती है, क्या करना चाहिए? अब तक जो प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं?
0: जरूर, बहुत कुछ टिप्स मिलता है, तो हम भी दिया था इसको हमारे टेरेस गार्डन के बारे में, जो
1: जी
0: रेडियो के
1: जी
0: थ्रू से तो बहुत
1: लोगों
0: सारा
1: तक।
0: लोगों को
1: जी
0: लेके जा
1: जी
0: सकता। हर
1: जी
0: चीज़ तो हम लोग घर घर जाके तो नहीं बोल सकते, एक चैनल रहता है उसके थ्रू से हम लोग और चीज़ को हम लोगों पब्लिक को में लेके जा सकते, गांव तक लेके जा सकते। तो रेडियो बहुत इम्पोर्टेंस रोल करता है, एजुकेशन में भी करता है, एग्रीकल्चर में करता है, और मेडिकल लाइन में भी। बहुत डॉक्टर का जो हम
1: जी
0: सुनी है,
1: प्रोग्राम
0: बहुत
1: जो
0: कुछ प्रोग्राम्स हम सुनी है, बहुत अच्छा लगता है रेडियो। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम भी चलता है हम लोग अंडमान निकोबार
1: जी
0: आइलैंड्स का,
1: जी
0: इसलिए हम बहुत खुश है रेडियो। और भी आगे अच्छे से प्रोग्राम देना और भी आगे बढ़ना।
1: चलिए, धन्यवाद भानुमति
0: धन्यवाद,
1: जी।
0: धन्यवाद मैडम।
1: आइए मिलते हैं पद्मश्री से सम्मानित किसान चेल्लमल जी से।
2: नमस्ते। हम 55 साल से हम शुरू करा, 10 साल का पहले हम लोग को इतना जानकारी नहीं है। मेरा अपा 10 साल, 10 उम्र का वही टाइम से, 10 साल 10 उम्र का वही टाइम से,
1: हाँ, 10 उम्र की थी आप, तब
2: हाँ
1: से आप रेडियो से जुड़ी हैं।
2: जुड़िए।
1: बहुत ही अच्छी बात है। बहुत लंबा अरसा होता है चेलमल जी कि रेडियो से आप जुड़ी हैं। कैसा लगता है आपको रेडियो सुनना?
2: अच्छा, वही तम जंगल में कुछ आइडिया नहीं है, शुद्ध आवाज़ सुनने के लिए भी नहीं है, इसलिए मेरा अपा क्या बोलता है, मेरा कोई कुछ क्या आइडिया करके बोलता था रेडियो लेके आएगा, रेडियो तो करंट नहीं है उनसे, बैटरी में
1: बैटरी से भी
2: चलाएगा
1: जी जी
2: करके मेरा अपा लेके आया रेडियो, लेके आके दिया, लेके आके देने से तमिल में एक गाना आएगा, वही टाइम रेडियो को पक्चा लेके जाएगा हम लोग
1: बगीचे में सुनते थे,
2: बच्चे में। अब तो आते आते टाइम हो जाएगा,
1: टाइम हो जाएगा। जी जी
2: सुनने नहीं सकेगा, इसलिए खाना खा के 12 बजे 1 बजे जाने के टाइम रेडियो साथ में लेके जाएगा।
1: अच्छा
2: लेके आ वो आते आते सुनते आएगा, नहीं से उतरी रख के सुन के सब मिलके सुन के लेके आएगा, और हिंदी गाना आएगा और हिंदी में निश आएगा सारा कुछ। वही टाइम से हिंदी किसी को पता नहीं ना, मेरा पापा मम्मी को तो हिंदी नहीं मालूम है, हम लोग थोड़ा मोड़ा सुनते रहेगा गाना में, अच्छा म्यूजिक में अच्छा, हिंदी गाना में अच्छा सुनेगा उसमें
1: यानी
2: अच्छा,
1: रेडियो से ही आपने हिंदी सीखी है, आपको सीखने का मौका मिला।
2: रेडियो में जो क्या अगल बगल वाला आता है बचाता और पाते,
1: जी
2: इसलिए
1: जी
2: रेडियो में आते जाते कोई कोई आता है, इसलिए सीखे थोड़ा, अभी भी ज़्यादा नहीं मालूम है, थोड़ा मोड़ा मिलता था।
1: फिर भी बहुत अच्छा हिंदी आप बोलती हैं। रेडियो से आप 10 साल से जुड़ी हैं, जब आप 10 उम्र की थी, आज आपकी उम्र लगभग 70 साल होगी,
2: 70 हो गया,
1: 70 हो गया।
2: 70
1: यानी रेडियो से आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकती
2: जी
1: हैं,
2: जी
1: बहुत ही अच्छी बात है। चिलमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बहुत ही अच्छे विचार उन्होंने दिए आकाशवाणी के बारे में। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम अपने किसान साथियों के लिए अच्छे से अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो भारत का सबसे पुराना और प्रमुख सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है। 1936 में अपनी स्थापना के बाद से ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य पर काम कर रहा है। ये जन जन को सटीक समाचार, शिक्षा और मनोरंजन के साथ जोड़ता आया है। आज सबसे ज्यादा रेडियो गांव में और महिलाओं के किचन में सुना जाता है।
3: हर साल 2 जून को केंद्र अपने ऐतिहासिक सफर का जश्न मनाता है।
1: आज भी बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने जश्न मनाया अपने इस रेडियो स्टेशन के प्रांगण में। सभी किसान भाई बहनों को, तमाम श्रोताओं को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार।

अब सुनते हैं जावेद अली का गाया एक गीत, जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने। निशांत खान ने इस गीत की धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है ये साली जिंदगी।

अब सुनिए हॉस्टल फिल्म का एक गीत। गीत व संगीत विराग मिश्रा के हैं। आवाजें हैं राज और सोनाली की।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम शामे बहार। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं तन्नू वेड्स मन्नू फिल्म का एक गीत। इस गीत को गाया है लैम्बर हुसैनपुरी ने, राजशेखर की रचना है।

आइए अब सुनते हैं थैंक यू फिल्म का एक गीत नीरज श्रीधर और जावेद अली की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम शामी बहार संपन्न हुआ। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए दिल ने फिर याद किया 7:20 पर, 7:30 पर युवाणी के तहत आकाशवाणी श्री विजयपुरम के स्थापना दिवस के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम प्रसारित की जाएगी। रात 8 बजे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे। रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए संदेश से आते हैं। रात 10 बजे ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। एग्री टिप्स कार्यक्रम प्रातः 5:55 पर, जिसमें जानकारी का विषय रहेगा मिर्च की खेती। सवेरे 6:10 पर आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन पाएंगे। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा साइकिल शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। जन सूचनाएं सवेरे 7 बजे। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत साहित्यिक दर्पण कार्यक्रम में आप सुमन सिंह से काव्य पाठ सुन पाएंगे कल सवेरे 7:30 पर। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप चंदन दास को सुन पाएंगे। सुबह 9 बजे फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप उस्ताद अमजद अली खान का सरोद वादन सुन पाएंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: that is break bad.
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट
2: 1 लाख दो बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

पहले कुछ मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने की जरूरत है। 63 वर्षों की प्रसारण यात्रा का उत्सव मनाते हुए आकाशवाणी श्री विजयपुरम में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। और नशा मुक्त समाज अभियान के तहत अबरडीन पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। यह लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को देखने का अधिकार देती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियाँ उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदायों के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें। आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने आज अपना 63वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून के प्रसारण के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्राचार्या रीता बैनर्जी उपस्थित रहीं। आकाशवाणी की सहायक निदेशक कार्यक्रम मीना प्रकाश ने स्वागत भाषण दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में MJ ग्रुप द्वारा गणेश वंदना एवं देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। असाइनी कलाकारों ने छोटा नागपुरी नृत्य, निकोबारी लोक नृत्य तथा कव्वाली की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। सुजाता टीम द्वारा फ्यूजन नृत्य प्रस्तुत किया गया। तरन्नुम मोहम्मद और हेमलता द्वारा कश्मीरी शैली का मनमोहक नृत्य एवं संगीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के उप महानिदेशक एवं क्लस्टर प्रमुख C. सुब्बाराव ने कहा।

0: विजय परम के 63वें स्थापना दिवस पर सभी श्रोताओं, कलाकारों एवं कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 63 वर्षों से आकाशवाणी सूचना, शिक्षा, संस्कृति और जनसेवा का विश्वसनीय माध्यम बनी हुई है। हम अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप जनहित और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। आइए इस अवसर पर हम सभी जनसेवा और उत्कृष्ट प्रसारण के अपने संकल्प को और मजबूत करें।
1: कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय समाचार एकांश के प्रभारी अंकित कुलश्रेष्ठ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में कार्यक्रम निष्पादक जयशीला जसिंता लकड़ा ने उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, पर्यावरण दिवस और मादक पदार्थ। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र तथा पर्यावरण सूचना जागरूकता क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम केंद्र द्वीपीय जैव विविधता द्वारा विभिन्न जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों में चित्रकला प्रतियोगिता, द्वीप समूह की जैव विविधता पर LED प्रदर्शनियों, पुस्तिकाओं एवं ब्रोशरों के माध्यम से प्रदर्शनी, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम पर विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय संगोष्ठी, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, पौध वितरण तथा समुद्र तट सफाई अभियान शामिल हैं। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय अब जलवायु के लिए रखी गई है, जो जलवायु परिवर्तन और उस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर केंद्रित है। इस वर्ष की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। कल सुबह 7:30 बजे सेल्यूलर जेल से ZSI कार्यालय तक पर्यावरण जागरूकता रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना है। नशा मुक्त समाज की दिशा में अपने अभियान को जारी रखते हुए अबरडीन पुलिस थाना ने पिछले दिनों 2 अलग अलग मादक पदार्थ विरोधी अभियानों में सफलता हासिल करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा मेथामफेटामाइन, साइकोट्रॉपिक गोलियां और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। थाना प्रभारी अबरडीन निरीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दक्षिण अंडमान के SDPO दीपेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 2 स्थानों पर छापेमारी की। पहली कार्रवाई मजार पहाड़ क्षेत्र में आरोपी से 2.16 ग्राम मेथामफेटामाइन तथा 47 नाइट्राजेपाम टैबलेट बरामद की। दूसरी कार्रवाई में फिनिक्स बे स्थित के पास आरोपी से 2.86 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद हुई। दोनों आरोपियों के विरुद्ध NDPS के तहत अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन के विकास अनुभाग 4 ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्य भूमि के विभिन्न संस्थानों में BE, BTEC, लेटरल एंट्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष द्वीप समूह के डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 10 सीटें आवंटित की जाती हैं। उपलब्ध सीटों में BE सिविल की 2 सीटें, BE कंप्यूटर साइंस की 2

0: सीटें, बीई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक सीट, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की दो सीटें तथा बीई मैकेनिकल की तीन सीटें शामिल हैं। ये सीटें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी कल से 20 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए collegeadmission.andamannicobar.gov.in पर देखा जा सकता है। डिगलीपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में व्याख्याता एवं प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये नियुक्तियां 11 माह की अवधि के लिए की जाएंगी। आवेदन प्रपत्र अंडमान निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने की जरूरत है। 63 वर्षों की प्रसारण यात्रा का उत्सव मनाते हुए आकाशवाणी श्री विजयपुरम में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। और नशा मुक्त समाज अभियान के तहत अबरडीन पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: चलता है
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। हडवे में 5 मिलीमीटर, श्री विजयपुरम में 4 मिलीमीटर, कार निकोबार में 1 मिलीमीटर, वायुसेना केंद्र कार निकोबार में 1 मिलीमीटर और ननकौरी में 1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे आज से 4 जून तक समुद्र में ना जाएं। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवानिदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी जॉली बॉय कल 3 जून को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलकर माहे बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर जाएगा और ये जलयान अगले दिन बृहस्पतिवार 4 जून को प्रातः 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माहे बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बाराटांग कल बुधवार 3 जून को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटकर स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर जाएगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज

संदीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानीचंगा, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान अगले दिन 4 जून को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा पर जाएगा और ये जलयान कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप की यात्रा पर जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा पर जाएगा और कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान अगले दिन 4 जून को 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए छूटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

अभी आपने चांदनी फिल्म का ये गाना सुना, सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ों में। शिवहरि का संगीत था और आनंद बख्शी की रचना थी। आइए अब सुनते हैं बरसात की एक रात फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। संगीत आरडी बर्मन का है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 2 जून है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम की स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आकाशवाणी श्री विजयपुरम केवल एक रेडियो केंद्र नहीं, बल्कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की विविध संस्कृति, परंपराओं और जनजीवन की सशक्त आवाज़ है। वर्षों से यह केंद्र समाचार, शिक्षा, मनोरंजन, संगीत तथा जनहितकारी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जागरूक और शिक्षित करने का कार्य कर रहा है। समुद्र से घिरे इन सुंदर द्वीपों में आकाशवाणी श्री विजयपुरम लोगों को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यहाँ प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं, लोक संस्कृति, कला और साहित्य को प्रोत्साहित करते हैं तथा नई पीढ़ी को अपने जड़ों से जोड़ते हैं। सूचना और तकनीक के इस आधुनिक युग में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जनसेवा की भावना के कारण श्रोताओं के हृदय में विशेष स्थान रखती है। यह केंद्र न केवल जानकारी प्रदान करता है, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव को भी सुदृढ़ बनाता है। निसंदेह आकाशवाणी श्री विजयपुरम जनसंचार के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक संस्था है, जो ज्ञान, संस्कृति और जनसेवा के अपने उद्देश्य को निरंतर आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, इसी संदर्भ में हमने बात की अपने कुछ दोस्तों से और जाना उनके विचार।

दोस्तों, रेडियो की आवाज़ सुनते ही मन में एक अलग ही दुनिया बस जाती है, जहां कविता, संगीत और कहानियों की धुनें सुनाई देती हैं। रेडियो पर कविता, गीत, कहानियां सुनने का एक अलग ही आनंद है, जहां शब्दों की धुन और अर्थ मन को छू जाते हैं। रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो हमें समाचार, संगीत, नाटक और अन्य कार्यक्रमों को सुनने का अवसर प्रदान करता है। रेडियो शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करता है जो हमें विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करता है।

सकता है। रेडियो एक सुलभ माध्यम है जो लगभग हर घर में उपलब्ध होता है। रेडियो की लागत कम है जो इसे एक आदर्श माध्यम बनाती है। दोस्तों, आपातकालीन स्थितियों में जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में रेडियो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रेडियो की महत्वता को समझते हुए हमने अपने कुछ श्रोताओं से जाना कि रेडियो उनके जीवन में कितना महत्व रखता है। चलिए करते हैं उनसे बातें।

0: सबसे पहले हम जानते हैं शौर्य से, जो 11 चरमा में रहते हैं, उनका रेडियो के प्रति कितना लगाव है। हेलो। तो शौर्य जी, जैसा कि आपको पता है, रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, तो आपके जीवन में रेडियो कितना महत्व रखता है?
1: मेरे जीवन में रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में हर संडे हेलो फरमाइश का कार्यक्रम सुना जाता था सुबह 10:30 बजे, और जब भी कोई जरूरी सूचना चाहिए होती है हमारे दीपों से जुड़ी हुई या फिर मौसम से जुड़ी हुई, तो ऐसे में हम रेडियो का समाचार सुनते हैं, जिससे हमें सारी जानकारी मिलती है और रेडियो से एंटरटेनमेंट तो हमेशा हमें मिलता ही है। लगातार कितने अच्छे और नए नए कार्यक्रम आते रहते हैं, तो रेडियो मेरे जीवन का एक ऐसा अंग है जिसको मैं हमेशा याद करता रहूंगा।
0: जी, तो जैसा कि शौर्य जी आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति में भी रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, आपातकालीन स्थिति में रेडियो का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि करंट नहीं होता। आपातकालीन स्थिति, जैसे कि हमारा जो आइलैंड है वो नेटवर्क प्रोन एरिया है, तो ऐसे में रेडियो का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार करंट नहीं रहते हैं तो मोबाइल से कनेक्ट कर पाना या फिर कोई टाइप का इन्फॉर्मेशन दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में रेडियो का होना बहुत ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि ये बैटरी से चलता है और हमें हर जानकारी मुहैया कराता है।
0: तो आप कितने समय से रेडियो सुनते हैं?
1: जी, मैं तो बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूँ।
0: जी, और आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
1: जी, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जो फरमाइश है, इसके अलावा जो हमारे दीप समाज आ रहा है वो अच्छा लगता है मुझे।
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: मुझे सारे ही कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: जी, तो हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।
1: जी, नमस्कार।
0: दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रेडियो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि सूचना प्रसारण, संचार का साधन और सांस्कृतिक महत्व। रेडियो की व्यापक पहुंच और स्थानीय महत्व इसे इस क्षेत्र में एक प्रभावी माध्यम बनाते हैं, क्योंकि हम चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं और हर स्थिति में रेडियो हमारा साथ देता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारे अगले श्रोता से कि रेडियो के बारे में उनका क्या विचार है।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मेरा नाम है श्री कृष्ण खोरखेड़े, वडोदरा जिला जलगांव, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी।
0: श्री कृष्ण जी, कैसे हैं आप?
2: बस एकदम मजे में दीदी।
0: जैसा कि आधुनिक समय में देखा जाता है कि ज्यादातर लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट से कई चीजें देखते हैं या टेलीविजन देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में रेडियो आपके जीवन में क्या महत्व भूमिका निभाती है?
2: हाँ दीदी, बहुत सालों से रेडियो सुनता हूँ। 1980 से मैं रेडियो सुन रहा हूँ और गीत का संग्रह बनाता हूँ। गीतकारों की, संगीतकारों की, हीरो हीरोइन के सबका रिकॉर्ड रखता हूँ। उनकी जन्म तिथि, उनकी पुण्य तिथि सभी का रिकॉर्ड रखता हूँ।
0: बहुत ही अच्छी बात है।
2: बिल्कुल दीदी, बचपन से भी रेडियो सुन रहा हूँ मैं और आज तक भी सुनते जा रहा हूँ, आगे भी सुनते जाऊंगा। रेडियो का जो प्रोग्राम है दीदी, बहुत मन को भाते है। सुरीले कार्यक्रम रहते हैं किसानों के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, और सभी जानकारी प्राप्त होते है, मौसम की जानकारी प्राप्त होते है। मैं ज्यादा दूरदर्शन टीवी पर देखता नहीं दीदी, रेडियो सुनता।
0: जी, तो आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है रेडियो पर?
2: मेरे पसंदीदा जो फिल्मों के फोन इन कार्यक्रम दीजिए, फोन पर आधारित जो फिल्मों के गीत के श्रोता लोग बोलते हैं, वो सभी कार्यक्रम मैं सभी केंद्रों की सुनता हूँ और सभी केंद्रों पर फोन करने की कोशिश भी करता हूँ दीदी।
0: बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार। दोस्तों, रेडियो का जब इतिहास याद करते हैं तो बचपन से लेकर आज तक रेडियो के कई दौर याद आते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले श्रोता से उनका क्या विचार है।
3: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: गिराम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ मैम।
0: तो चलिए, हम आपसे जानते हैं कि आप रेडियो सुनना कितना पसंद करते हैं।
3: बचपन से रेडियो सुन रहे हैं दीदी, हम 9 साल की उम्र से सुन रहे हैं, 40 साल अभी उम्र है हमारी।
0: वाह, बहुत ही अच्छी बात है। आपको रेडियो में कौन कौन से कार्यक्रम सुनना बहुत पसंद है?
3: आपके तो मैम हम ये 10:30 बजे जो आता है ना चित्रपट संगीत आता है, वो बहुत अच्छा लगता है हमको, सुबह के टाइम जो आता है 10:30 बजे।
0: जी जी।
3: और ये तो हम फोन इन कार्यक्रम तो किसी का मिस नहीं करते, आपका सभी कार्यक्रम सुनते हैं, किसान के लिए आता वो भी सुनते हैं।
0: जी जी, हमें खुशी होती है कि आप अपना कीमती समय निकालते हैं और हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और ऐसे ही रेडियो से जुड़े हुए हैं। जी, तो आपसे बात करके हमें बहुत

0: अच्छा लगा।
1: धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत।
0: जी दोस्तों, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाने का अवसर प्रदान करती है। चलिए जानते हैं अगले श्रोता का क्या कहना है।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार। तो वैसे आप तो बहुत सालों से रेडियो सुन रहे होंगे, तो आपके जीवन में रेडियो कितना महत्वपूर्ण है?
2: रेडियो से बहुत जानकारी मिलती है, उसमें अपने अपने जीवन के विषय में बहुत कुछ सिखाया जाता है। रेडियो से जानकारी मिलती है और किसानों के लिए भी मिलती है। उसमें वो जो डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर लोग जब भी सलाह देते, उससे बहुत बहुत ही शिक्षा मिलती है दीदी रेडियो सुनने से।
0: जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही सही कहा। जी जी,
2: बहुत जरूरी बातें भी होती हैं उसमें।
0: और आप कितने समय से रेडियो सुन रहे हैं?
2: जी दीदी, मैं 2014 से सुन रहा हूँ रेडियो भोपाल विविध भारती। सुनते थे, जब से ऐप आया है जब से और भी केंद्र सुनने लगे हैं आपके केंद्र, और भी केंद्र।
0: दोस्तों, आधुनिक समय में इस भगदड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय बहुत कम हो गया है, पर रेडियो एक ऐसा माध्यम है जब आप अपने घर में काम कर रहे हो या किसी और चीज में व्यस्त हो, तो आप रेडियो चलाकर अपने काम को करते हुए भी इसे सुन सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे नियमित श्रोता धीरज जी का क्या कहना है।
3: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार। आप तो धीरज जी, जैसा कि आपको पता है कि रेडियो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो आप कितने समय से रेडियो सुनते हैं और आपको कौन से?
3: जी, देखा जाए तो बचपन से रेडियो से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरी समझ आई तब से मैं रेडियो से पत्र व्यवहार करने लगा 18 साल से। आज मेरी आयु 55 साल के ऊपर आई। रेडियो ने जो दिया वो कोई प्रसार माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कोई नहीं दे सकता, इतना रेडियो और आकाशवाणी ने दिया है।
0: जी जी, तो आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
3: ज्यादातर युवाणी कार्यक्रम आपके यहाँ से पेश होता है। युवाणी कार्यक्रम हमको बहुत पसंद है, 7:30 बजे पेश होता है, और आप लोगों की जो पेशकश है वो लाजवाब है।
0: जी बहुत धन्यवाद, आप हमारा कार्यक्रम निरंतर सुनते आ रहे हैं इतने समय से, हमें बहुत खुशी हुई।
3: पूरी टीम का काम काज इतना बढ़िया है कि हम फोन के नहीं रह सकते।
0: जी धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना कि हमारे बहुत से श्रोता हैं जो आज भी लगातार रेडियो से जुड़े हुए हैं, और हमें खुशी होती है कि लोग इतने व्यस्तता भरे जीवन में भी रेडियो सुनना पसंद करते हैं।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं ऋषिता चौधरी की ये स्वरचित कविता।
1: आकाशवाणी की मीठी सी आवाज, जैसे माँ की पहली पुकार। यह है श्री विजयपुरम से प्रसारण, सुनते ही खिल उठे हर आंगन और द्वार। ये सिर्फ सूचना नहीं, ये गांव की सुबह का संस्कार है। हर दिन की शुरुआत यहाँ रेडियो की वाणी से तैयार है। ये सिर्फ सूचना नहीं, ये गांव की सुबह का संस्कार है। हर दिन की शुरुआत यहाँ रेडियो की वाणी से तैयार है। सांस्कृतिक संवाद जैसे सुबह की आरती घर घर, फिर आता है ग्राम समाचार, खेत खलिहान का हाल। रेडियो बनता है चौपाल से भी बड़ा हलचल मंच हर साल। रेडियो बनता है चौपाल से भी बड़ा हलचल मंच हर साल। बीज, मिट्टी, बरसात, हर बात में समाया विज्ञान। हल थमता है पर उम्मीद चलती है साथ। धरती माँ बोलती है जब रेडियो करता है साकार। धरती माँ बोलती है जब रेडियो करता है साकार। दादी हंसकर कहती, रेडियो से ही मिलती असली पहचान। नमक, शक्कर और बीमारी के संवाद, रेडियो बना है हर घर का सीक्रेट डॉक्टर और जीवन दर्शन। रेडियो बना है हर घर का सीक्रेट डॉक्टर और जीवन दर्शन। कहानियाँ कविताएँ सपनों की परिया जैसी, बच्चों की आँखों में चमक, रेडियो से उड़ान। रेडियो उनके सपनों का पहला उड़ान स्थान। रेडियो उनके सपनों का पहला उड़ान स्थान। जहाँ सुरों में मिलती है भावनाओं की तस्वीरें, जहाँ सुरों में मिलती है भावनाओं की तस्वीरें, रोजगार, जीवन शैली और गीतों की झनकार। रेडियो है वो आईना जो दिखाता है आत्मविश्वास हर बार। जहाँ हर सुर बहता है गांव की सांच के साथ, कुछ विशेष चूल्हे की आँच और रेडियो की तान। हर गजल में थिरकती है चांदनी की मुस्कान। रेडियो से लोग गीत मन को मिलते हैं, माँ और दादी गुनगुनाती है सुर में, सुनते सुनते ही सो जाता है पूरा जहान प्रेम से।

0: भी हो या स्वतंत्रता दिवस, हर दिन कुछ खास हर बार। देशभक्ति गीतों से गूंजता है सारा गांव, रेडियो जैसे बना हो संस्कृति और देश प्रेम की ठाओ। सिग्नल धीमा पर एहसासों की गहराई बहुत होती है, श्री विजयपुरम की आवाज़ थमती है हर नींद। तू है संस्कृति संवाद और स्नेह का प्रतीक अतीफ, तू है संस्कृति संवाद और स्नेह का प्रतीक अतीफ।
1: दोस्तों, इसी संदर्भ में आइए आपको एक और कविता सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, रेडियो एक संचार है, रेडियो एक संचार है, रेडियो एक विचार है, रेडियो एक संचार है, रेडियो एक विचार है। किसी की भूली बिसरी याद, किसी की भूली बिसरी याद और किसी का पहला प्यार है। रेडियो एक संचार है, रेडियो एक विचार है, किसी की भूली बिसरी याद और किसी का पहला प्यार है। ज्ञान विज्ञान, देश विदेश, घर समाज की जानकारी इसमें अपार है। ज्ञान विज्ञान, देश विदेश और घर समाज की जानकारी इसमें अपार है। दिखने को एक छोटा सा डिब्बा, दिखने को एक छोटा सा डिब्बा, परंतु इसमें समाया पूरा संसार है। आज रेडियो की अहमियत घटती जा रही है, आज रेडियो की अहमियत घटती जा रही है। दुनिया आज इसे छोड़ स्पॉटिफाई अपना रही है, आज रेडियो की अहमियत घटती जा रही है, दुनिया आज इसे छोड़ स्पॉटिफाई अपना रही है। लेकिन जब कभी कोई प्राकृतिक मुसीबत आती है, लेकिन जब भी कभी कोई प्राकृतिक मुसीबत आती है, तब जाकर लोगों को रेडियो की याद आती है, तब जाकर लोगों को रेडियो की याद आती है। कुछ के लिए ये कुछ भी नहीं, कुछ के लिए यह कुछ भी नहीं, परंतु कईयों के लिए ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। कुछ के लिए ये कुछ भी नहीं, परंतु कईयों के लिए ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। चाहे हो कोई भी, चाहे हो कोई भी, सबके जीवन में रेडियो से ज़रूर जुड़ा एक किस्सा है। किसी के लिए ज्ञान का तो किसी के लिए गानों का खजाना है, किसी के लिए ज्ञान का तो किसी के लिए गानों का खजाना है। कोई सिर्फ फरमाइशों का शौकीन, कोई सिर्फ फरमाइशों का शौकीन, तो कोई हर कार्यक्रम का दीवाना है। किसी के लिए ज्ञान का तो किसी के लिए गानों का खजाना है, कोई सिर्फ फरमाइशों का शौकीन, तो कोई हर कार्यक्रम का दीवाना है। रेडियो केवल एक शब्द नहीं, यह एक भावना है मन की, रेडियो केवल एक शब्द नहीं, यह एक भावना है मन की। अगर समझो इसे गौर से, अगर समझो इसे गौर से, तो यह सारणी है जीवन की, अगर समझो इसे गौर से, तो यह सारणी है जीवन की। किसी के लिए रेडियो बस एक मनोरंजन का जरिया, किसी की नज़रों में यह बस एक संस्थान है। किसी के लिए रेडियो बस एक मनोरंजन का जरिया, किसी की नज़रों में यह बस एक संस्थान है। लेकिन यहाँ मौजूद हम सब के लिए, यहाँ मौजूद हम सब के लिए, यह हमारा कर्म और यही हमारी पहचान है, यही हमारा कर्म और यही हमारी पहचान है।

दोस्तों, हर शुक्रवार युववाणी के तहत प्रसारित होता है फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसके तहत हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के गाने।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 4 से 4:30 बजे के बीच।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप?
2: मैं बैंगलोर में काम कर रही हूँ। मेरा हॉबीज ज्वेलरीज बनाना, खेलना, गाने सुनना।
3: अच्छा, किस तरह के गाना सुनने पसंद करती हैं आप?
2: मैं ज्यादा मेलोडी सुनती हूँ।
0: जो युवा दोस्त इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं, वो हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 232-336 और 232-558। तो याद रखिए, प्रत्येक शुक्रवार को युववाणी के तहत हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग बृहस्पतिवार शाम 4 से 4:30 बजे के बीच, कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।
4: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
2: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
3: Namaskar, thank you.
2: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
3: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका

0: तात्पर्य सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था,
1: जी
0: जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का यह नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हॉर्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग।
2: Minister giving a clarion call that India is the, if India's economy is going to reach the third largest economy, that
1: Yes.
2: India should be Annadata for the entire world. See,
1: Yes.
2: that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग, लाइक क्लाइमेट चेंज, देन इंश्योरिंग मार्केट एक्सेस, चैलेंजेस इन मार्केट एक्सेस, सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउसेस, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस एंड ऑल्सो रनिंग ग्रीन ट्रेन्स, you know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been, is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit taxes, the Kisan credit card, you know, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts.
1: Yes.
2: Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming, so that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture, and towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: यस मिस्टर सिंह, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप

0: का रूप में हमें बता सके।
1: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
0: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
1: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहां से खाद की उपलब्धता कहां से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखे तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता पंप होता है या नहरों से जाता है वो सिंचाई के काम में आता है, लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही है और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है,
0: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
1: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी

0: कंपनी को, उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य
0: कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर हियर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs a financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what have they revised? Keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, cost by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय, जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए या सुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान

0: है तो वो कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30,000 करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कारपोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक्स से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानते ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting and enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, you know, water, that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires

0: all the ministries of the government, along with the state governments, they have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem. That is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture and productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had a vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishw hai usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports, $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food exports hain unka share bhi बढ़कर 20% को पार कर गया है. सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड. सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ. फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, पीएलआई भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं, जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, इसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है. 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है. इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के तौर से, टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो पीएलआई, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशन को मंजूरी मिली है. और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशन के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं. और इसका मतलब है कि प्रोसेस

0: सिंह के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशनड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड आवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट प्रमोशन ऑफ high value crops like coconut, cocoa, cashew, sandalwood in coastal regions and agar trees in northeast and almonds, walnuts and pine nuts in hilly areas. These have been defined as the focus areas. So you think, you know, this kind of very focused approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward using the strengths of the opportunity?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Ministers particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you
2: very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, Empowering Farmers Through Welfare and Farmer-Centric Policies. The participants were Shekhar Iyer, Political Analyst, and S.P. Singh, Senior Journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
5: Hum. आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:32 और 36 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पदों हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 11 में पूर्ण संशोधित वेतन बैंड 3 के तहत 2 पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 10 में पूर्ण संशोधित वेतन बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि तथा आवेदन पत्र राष्ट्रीय जांच अभिकरण की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन कर

वाले उम्मीदवार बाद में अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। योग्य अधिकारियों के नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पर पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय के सामने केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003। ये आवेदन रोजगार समाचार में प्रकाशन के तिथि से 45 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक पहुंच जाने चाहिए। इच्छुक अधिकारी अग्रिम प्रति ईमेल spadmin.nia@gov.in द्वारा भी भेज सकते हैं। साथ ही डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए 2 मई का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम गौरव गान।

अभी आप संवेद स्वर में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। गौरव गान, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:45 पर समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा।

0: आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण

को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म

0: साक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने

श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को सीबीएसई में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Credit Guarantee Line Scheme. And the scheme, which was announced on 5th of May, as approved by the Cabinet, has seen a very good response. That means the MSMEs are looking for financial support from the organized sector. And that is also going to help in that bringing down the cost of operation. Because if you are going to the unorganized sector for financing, that will, your cost of operation will go up. Already there is an issue of competitiveness. So if the cost of operation is up, that competitiveness will also be impacted. So MSME financing is something very, very important thing. And the good news is that more and more banks are encouraging their people to go and lend money to the MSME. And of course, those MSMEs which are really what we call as the eligible MSME or financially better position or their repayment record is better, we are finding them that the banks are ready to pay that. And if I go by the last 5-7 days, many of the bank MDs have said that we have got 600 crore rupees, 700 crore rupees worth of application from MSME. So even if we take 10 people are talking about 700 crore each, that means 7,000 crore worth of loan going to be dispersed among the MSME.
1: Thank you, Shashir. Those were very clear and actionable insights. And to our listeners, the RBI's annual report is more than statistics. It maps risks and opportunities that affect loans, savings, and the wider economy. Appreciate your perspective and your time for us.
0: Thank you
1: very much.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on key takeaways from RBI's annual report 2025-26. The participants were Shishir Sinha, economic analyst, and Rajesh Lekh, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app News on AIR.
3: Money Talk. Manthan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
4: मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जिसने शहरों और कस्बों में काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले छोटे विक्रेताओं की मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजेश कुमार जी, जो जनरल मैनेजर हैं सिडबी के, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: राजेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आम लोगों के समझने के लिए कि ये पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या और इससे रेहड़ी पटरी वालों को खास तौर पर क्या फायदा मिलता है।
5: पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली एक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई योजना थी, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से 3 चरणों में लोन मिलता था। पहला लोन 10,000 का था, दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। इस लोन के साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था। और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है QR कोड के थ्रू पेमेंट लेना या डिजिटली पेमेंट करने पे 100 रुपए तक प्रति मंथ का इंसेंटिव था
4: जी।
5: अब उसके अलावा 400 रुपए का और इंसेंटिव ऐड हो गया है, जो कि बल्क ट्रांजेक्शन परचेज करने पे उनको मिलता है। इसके अलावा जो सरकार की 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल के डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
4: तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
5: ये मददगार कितनी ज्यादा थी, ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1,13,00,000 लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में, अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था
4: जी।
5: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है और लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
4: जी। राजेश, एक अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
5: सुधार 2 रूप में आप देख सकते हैं। एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी

0: से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
1: जी
0: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया और फिर 50,000 रुपये का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ ना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए में सुविधा हो रही है। और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है।
1: जी
0: तो दोनों रूप से फायदा हुई। और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, दो स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
1: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय, कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
0: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं। सिर्फ आप मछली बेचते थे, अब मछली को जो है सो फ्रीज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
1: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
0: शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूएलबीज हो, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है, उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना, और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना, वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है, लोग लोन चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
1: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
0: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की। और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा। आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा
1: जी,
0: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में।
1: जी जाहिर है, तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है और उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
0: डिजिटल इंसेंटिव है, अगर आप जैसे ग्राहक से अपने पैसा जो है सो QR कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है, जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो, तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
1: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
0: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं ही हैं, तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता

0: प्रदान कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में, बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है, तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
1: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से। एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
0: अर्थव्यवस्था को फायदा यह है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते, अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इंप्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहां जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको होता है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो, जिस घर के लिए अलग

0: सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इंप्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहां जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको होता है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो। जिस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी, लेकिन जहां जो क्रिटिकल है वहां वो उस पर एक्सपेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
1: आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया, तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
0: एक तो हम देखना चाह रहे थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाह रहे थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं। तो चार बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उनके घर का रहना ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ, और खाने पीने का एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, कि इन चारों पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
1: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए? क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
0: उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना अमूलचूल है। ये अमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता
1: जी,
0: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता है।
1: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी इस स्कीम में शामिल होंगे?
0: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, अब हम उसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक तो वो फायदा हो रहा है और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनके उनको एक बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
1: सर, आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें?
0: जैसे हमारा जो स्कीम है, जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75-75 लाख लोगों ने लोन ले रखा है।
1: बिल्कुल,
0: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से, या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकेंड लोन के लिए एलिजिबल है। उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकेंड लोन लिया है और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपे कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60-70% लोग जो है सो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
1: तो चलिए हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
2: सर, हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे ठेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर
1: जी।
2: और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे, दुकान फिर से शुरू की, तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर। तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई, ये सर अच्छा हुआ कि पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा, फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें रजिस्टर करा कर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। पहली बार तो उसमें मंथली देना पड़ने लगा, फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000, 20,000, 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है। उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
1: बिल्कुल, तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी बात बता रहे थे कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी बॉडी होता है, आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो, और नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें। और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कम्बाइंड रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR UELB अप्रूव

0: दे देगा, तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
1: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम संदेश से आते हैं।

श्रोताओं, यदि आप भी अपने पसंद के गाने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप हमारे इस नंबर पर अपने पसंद के गाने भेज सकें और हम इस कार्यक्रम में आपके गाने शामिल कर पाएँ। तो नोट कीजिए, हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000, और लिख भेजे कार्यक्रम का नाम, संदेश से आते हैं, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम व पता ज़रूर लिखें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और लेते हैं पहला मैसेज, जिसे हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने, और मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, और साथ ही उत्तर प्रदेश से ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह जी ने ये हमसे फरमाइश की है कि हम हमारी पसंद के गीत इन्हें सुनवाएं। तो चलिए, आप सबों के लिए हमने चुना है ये गाना।

संबलपुर काकेकर से, फागुराम यादव और ज्योति और ओजस्वी ने हमें फरमाइश की है नसीब फिल्म के इस गाने के लिए। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी ने फरमाइश की है तीसरी कसम फिल्म के इस गाने के लिए।

आइए अब सुनते हैं पत्थर के सनम फिल्म का गाना। और इस गाने के लिए हमें फरमाइश की है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका जी ने।

और अब ये कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश हम लेते हैं, जिसे हमें भेजा है श्री विजयपुरम से, श्री विजयपुरम के डेयरी फार्म से विधि और विशाल ने। ये सुनना चाहते हैं कालिया फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, अब चलते चलते हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। हडबे में 5 मिलीमीटर, श्री विजयपुरम में 4 मिलीमीटर, कार्निकोबार में 1 मिलीमीटर, वायुसेना केंद्र कार्निकोबार में 1 मिलीमीटर और ननकौरी में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है तथा ये बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। अतः मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे आज से 4 जून तक समुद्र में ना जाएं। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:31 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:28 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: अनमोल विचार।
1: आशावादी दृष्टिकोण का प्रयोग आप अपनी प्रगति के लिए कर सकते हैं, अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं। हम निराश हो जाएं तो सफलता को पाने का हमारा लक्ष्य भी धूमिल हो जाता है। यदि हम में आशा है तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद की एक किरण भी शेष हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। बस जरूरत है तो हमें हर एक काम में आशावादी रहने की।
0: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।